0: नर नारी बच्चे सभी मेरे लिए नारायण का अवतार हैं। जिस आत्मीयता से नारद सभी के पास पहुंचते हैं उसी आत्मीयता से मैं पहुंचता हूं। मेरे लिए सभी अंतरात्मा और ईश्वर के रूप हैं, जो सब में हैं, हर एक में विराजमान हैं। उन्हीं गुणों के माध्यम से मैं उनके हृदय में प्रवेश करता रहता हूं। अगर मेरी वाणी सत्य होगी तो हर घर तक पहुंचेगी, प्रत्येक हृदय तक पहुंचेगी। मैं तो मजाक में कहता रहता हूं कि आईने में सूरत देखने की मुझे फुर्सत नहीं और उसकी आवश्यकता भी नहीं। ये जो विविधता से सजे चेहरे हैं उन सब में मैं अपने आप को देखता हूं, ऐसी मेरी भावना है। मेरी यात्रा में मैंने पल हर पल यही अनुभव लिया है। जिस प्रांत में मेरी भाषा लोगों को समझ नहीं आती थी, उस प्रांत में मेरे भाषण का जैसे तैसे अनुवाद करके वहां के लोगों तक पहुंचाया जाता था। उन सारे प्रदेशों में भी मुझे आत्मदर्शन का अनुभव हुआ और इसकी जांच यानी उन्हें भी वही अनुभव हुआ। मैं जहां जहां भी गया वहां के लोगों ने मुझे दूसरे प्रांत का ना मानकर अपना ही समझकर आदर दिया, प्यार दिया। मेरा तो अनुभव यह था कि जितने प्यार से आत्मीयता से महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं उतनी आत्मीयता से अन्य प्रांत के लोग भी।
1: इसका भी अनुभव विनोबा जी को हुआ। दर्शकों की तरफ से जो उनके दर्शन के अभिलाषी होते हैं उन्हीं की ओर देखने का दृष्टिकोण मनुष्य मूर्ति के रूप में नहीं तो साक्षात प्रभु राम जो उनके हृदय में वास करते हैं केवल उन्हीं के विविध रूपों में सज धज कर उनके सामने विराजमान है, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। बचपन की घटना को याद करते हुए विनोबा जी कहते हैं,
0: मेरी माँ रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे मानो भगवान राम का जन्म ले रहे हों ऐसी कल्पना कर ध्यानावस्थ बैठ जाती थी। उनकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धाराएं बहती। मैं माँ से कभी कभी मजाक में पूछता था, कैसा हुआ राम का जन्म, राम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता है जवाब में माँ क्या कहती, दिखाई देंगे बेटा, तुझे भी दिखाई देंगे। उनके इन आशीर्वचन के अनुसार मैं आज अपनी खुली आंखों से सामने बैठे राम को देख रहा हूं। मुझे ये बताते हुए आनंद हो रहा है कि मैं सिर्फ रामनवमी के दिन ही राम के दर्शन नहीं करता तो अन्य समय भी उनके दर्शन हो जाते हैं, एक भी दिन कोरा नहीं जाता। यात्रा में तो रोज ही अपनी आंखों से राम के दर्शन करता रहता हूं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद कहां है प्रभु, जब इसका विचार करता हूं तो उसके अखंड दर्शन मुझे हो रहे हैं ऐसा आभास होता है। निरंतर 13 वर्ष ये दर्शन मुझे प्राप्त होते गए और उसी से मेरा पोषण होता रहा। यह शरीर अन्न से बना है, अन्न के आधार पर ही उसका पोषण होता है, परंतु इस देह के लिए अन्न का पोषण ही पर्याप्त नहीं तो दूसरे भी पोषण की आवश्यकता होती है। वही पोषण 13 साल मुझे मिलता रहा है। यही वजह है कि अनेक विषम परिस्थितियों में भी इस शरीर द्वारा सेवा कार्य मैं कर सका। वह पोषण था हरि दर्शन का।

0: विनोबा अपने अनुभव को बताते हुए कहते हैं कि
1: मैं कई कारणों से अपने आप को दुर्बल मानता हूं। केवल एक ही बल मुझे बलवान बनाता है। उस बल का उद्गम कहां है यह किसी को नहीं पता, परंतु उसका प्रभाव सभी को पता है। उसके प्राप्त की परवाह कोई नहीं करता, किंतु उसका अनुभव सभी को होता है। मुझमें से अगर उसे निकाल दिया जाए तो मेरा वजूद कुछ नहीं रहेगा। जिस वजह से मेरी पदयात्रा चलती रहती है, ऐसी मेरी अपनी कोई शक्ति का अनुभव मैंने नहीं किया, वो तो एक साक्षात्कार ही होगा। इसे कुरान में आयतुल यकीन कहते हैं।

मैं चारों तरफ से परमात्मा की शक्ति से सराबोर हूं। इस शक्ति के अलावा कोई दूसरी शक्ति का वलय मुझे मेरे चारों ओर नजर नहीं आता। ईश्वरीय वातावरण के अलावा मैं किसी दूसरे वातावरण में नहीं रहता। देश भर पैदल घूमकर लाखों एकड़ जमीन मांगना और लोगों में उसे बांटना, ये सामर्थ्य मुझ में नहीं। मेरे पास ना तो अधिकार है और ना ही कोई संस्था। ईश्वर ने संकेत किया तो मैं चलने लगा और चल ही रहा हूं। चलते चलते वह जैसा नचाता है मैं नाचता हूं, वरना इतनी शक्ति मुझ में कहां। लोगों को जैसे मेरे दर्शन की इच्छा होती है, वैसी मुझे भी तीव्र उत्कंठा होती है, इच्छा होती है उनके दर्शन की। लोग ईश्वर हैं मेरे लिए, और ईश्वर काशी रामेश्वरम के मंदिर में नहीं, मेरे इन बंधु भगनियों के हृदय में वास करता है। मेरे कृष्ण सिर्फ मथुरा में नहीं रहते। मैं जहां जहां जाता हूं वहां वहां मुझे उनके दर्शन होते हैं, वरना तो व्यर्थ का भ्रमण न करता। इन 12-13 वर्षों में मुझे जो दर्शन के अवसर व लाभ मिले वो शायद ही कम लोगों को मिले हों। मेरा लोक संपर्क यह हृदय लोक संपर्क होता है, ना कि सूरत का।

0: वाणी संयम की शिक्षा के बारे में विनोबा जी कहते हैं,
1: बोलना मेरी किस्मत में लिखा था। बचपन से आज तक मैं बोल ही रहा हूं। पहले बचपन में विद्यार्थियों के सामने, मित्र परिवार के सामने, उसके बाद आश्रमवासियों के सामने और बाद में जनता के सामने भाषण देना, चर्चा करना निरंतर चलता रहता। बचपन में बोलने पर विशेष अंकुश ना रखता था, सहज भाव से मन में जो भाव उठते कह देता। किसी के पास एक और दूसरे के पास दूसरा, ये मुझे पता नहीं था। ये बात मेरे मित्र जानते थे, इसीलिए कभी मैंने तीखे प्रहार भी वाणी के अगर करने पड़े तो किए, मगर किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचने दी या संबंधों में दरार नहीं आने दी। मगर जब बापू के सहवास का लाभ मिला तो ये भी महसूस होने लगा कि वाणी पर अंकुश का होना अति आवश्यक है, खास तौर पर विषम परिस्थितियों में। कभी किसी से ऊंचा बोला तो शिकायत बापू के पास पहुंच जाती थी, मगर बापू ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा ही दूसरों के सामने मेरा बचाव किया। बापू को मेरा बचाव करना पड़ता है, इस बात का जब मुझे पता चला तो मैं अधिक जागरूक होकर वाणी पर संयम रखने लगा।
0: विनोबा जी का मानना है कि उनकी पदयात्रा में भारत के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। अगर उसका वर्णन पंडित नेहरू के शब्दों में करना पड़े तो वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया होगा। विनोबा जी कहते हैं,
1: वैसे देखा जाए तो भारत मेरे लिए अपरिचित नहीं था। भारत के भूतकाल अर्थात उसके इतिहास से मेरा अच्छा परिचय है। वास्तविक भारत के भूतकाल में इतना कुछ समग्र रूप में समाहित है कि उसका समग्र ज्ञान होना मुश्किल है। मुझे तो केवल उसका एक अंश ही प्राप्त हुआ है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। परंतु उस दर्शन प्राप्ति का प्रयास मेरे बचपन से निरंतर चल रहा है, और वैसे अवसर भी मुझे प्राप्त होते गए। भारत के लगभग सभी साहित्य का परिचय मैं पा चुका था। यही वजह है कि भारत कैसा है इसका थोड़ा सा आकलन हुआ, किंतु यात्रा के दौरान एक नवीन दर्शन के माध्यम से भारत का हृदय अति विस्तृत स्वरूप में सामने आया।
0: अपने स्वभाव के प्रति विनोबा जी के विचार ये थे कि उनकी माँ उन्हें अंतर्मुखी मानती थी। उनका मानना था कि विनोबा लोगों को टालता है, उनसे दूर भागता है, परंतु विनोबा जी कहते हैं,
1: मजेदार बात यह है कि मैं लोगों के पीछे रहता हूं और लोग मेरे साथ। जितनी मेरी पहचान लोगों से है शायद उतनी और किसी की भी नहीं होगी। जो एकदम बचपन से है ये पहचान ऐसी है, इसका क्या कारण है? इतना जनसंग्रह क्यों हो सका? कारण यह है कि स्वयं का रक्षण कैसे करें तथा दूसरों के काम कैसे आए ये मुझे पता था। स्वयं रक्षण हेतु गोपनीय बने रहे और दूसरों की सहायता के लिए खुलकर सामने आए। पानी के उस नल की तरह सरल, जब जरूरत हो खोलें और बंद करें। मेरी इसी शक्ति ने किसी का आक्रमण मुझ पर होने नहीं दिया, और ना ही मित्रों के, बड़ों के, अपरिचितों के आक्रमण होने देता हूं। अच्छे कार्यों के लिए मेरा अंतः हृदय सदैव ही खुला रहता है।
0: वे आगे कहते हैं कि
1: योग वशिष्ठ में आचार्य वशिष्ठ ने राम को उपदेश दिया है कि अंतर से त्याग और बाहर से समाज के साथ रहना चाहिए। हे राघव, आप जनलोक में विचरण करते रहो।
0: श्री माधव देव ने इसका अच्छा विवरण किया है, बहिरथ संग देखा योग, बाह्य आसक्ति का प्रदर्शन करो। काम करते वक्त कार्य के प्रति आसक्ति का प्रदर्शन करो, परंतु अंततः से पूर्णतः अनासक्त रहो। मूल संस्कृत में आंतु न त्याग, बाहेरु न संग, इतना ही। अंततः बोध रखे और बाहर से साथ है ऐसा दिखाए, ये विवरण श्री माधव देव ने किया है। ये अंतर्द्वंद नहीं, दो विरोधी विचार नहीं, तो ये एक ध्रुव तारा है। इस संदर्भ में लोकमान्य तिलक ने जहाज का उदाहरण दिया है। मुंबई से निकला जहाज किसी भी बंदरगाह पर पहुंच सकता है केवल एक ध्रुव तारे के सहायता से। ध्रुव तारा ही वो निशान है, ध्रुव तारे पर राहत निशानी जिसे हम मुक्ति मानते हैं, वो एक ध्रुव तारा। अगर ये सामने न हो तो हमारा ध्येय लक्ष्य गलत हो सकता है, भटकन हो सकती है। अतः मुक्ति हमारा ध्रुव तारा और प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमारा प्रवास मार्ग हमारा ध्यान सदैव प्रवास करते समय ध्रुव तारे पर हो तो हमारा अप्रोच प्रत्यक्ष होगा, अहिंसा का होगा। विनोबा जी कहते हैं,
1: मेरे मित्र सहकारी मेरी कार्य पद्धति को गूढ़ मानते हैं। वे बापू में ज्यादा भोलापन पारदर्शिता को देखते हैं, गूढ़ता को नहीं। किंतु वे ये भी मानते हैं कि मेरी पद्धति भले ही गूढ़ हो फिर भी वह शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक लगती है। इस पर मेरा तर्क ऐसा है कि कुछ अंतर अनुभव का होता है और कुछ समय का। जैसे बापू के और आज के काल में अंतर है, वैसे उनके और मेरे अनुभव में भी अंतर है। आज की मांग है मूल से आरंभ करने की, उच्च वर्ग से जितनी सहायता मिले उसे भी ले, किंतु शुरुआत मूल से ही होनी चाहिए। शंकराचार्य ने जहां से शुरुआत की मैं वहां से नहीं करता। विद्वानों के पास जाना, उनके विचारों में परिवर्तन करना और आगे का वह ही करेंगे, यह था शंकराचार्य जी का अप्रोच। किंतु मेरा अप्रोच तो कबीर का है, सरल सर्वसामान्य जन जन तक पहुंचना।
0: विनोबा जी आत्म अवलोकन करते हुए ये मानते हैं कि उनमें गूढ़वाद है। यही वजह है कि वे भ्रमण तो पृथ्वी पर करते हैं किंतु उनका चित्त किसी दूसरे स्तर पर होता है। वे कहते हैं,
1: अगर बापू के पास गया नहीं होता तो ध्यान धारणा के कार्यक्रम में आगे आने वाले मिस्टिक की दिशा में गया होता। किंतु बचपन से गीता का आकर्षण था और गीता में कर्म और ध्यान योग को एक रूप बताया है। यही कारण था जीवन में समत्व की आवश्यकता महसूस हुई और बापू के पास पहुंचने पर तो मेरे अंतर का विरोध ही समाप्त हो गया। मैं निरंतर उनके ही मार्ग पर चलता रहा और आज भी मेरे कदम उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं। रात दिन उसी का चिंतन है, फिर भी अंतस में एक बात है जो इन सब से अलग है।
0: किंतु बचपन से गीता का आकर्षण था और गीता में कर्म और ध्यान योग की एक रूपता को बताया है। वे आगे कहते हैं,
1: गांधी जी मुख्यतः एक्टिविस्ट थे और उनके बैकग्राउंड में मिस्टिसिज्म था। इसके विपरीत विवेकानंद बाहर से मिस्टिक थे तो बैकग्राउंड में एक्टिविस्ट थे, अर्थात उनमें मुख्यतः ध्यान आदि की वृत्ति दिखाई देती है। रामकृष्ण परमहंस में पूर्णतः मिस्टिसिज्म दिखाई देता है। उनके जीवन से सामान्य व्यक्ति को भले ही बहुत बोध मिलता हो तो भी उनके जीवन का स्वरूप पूर्णतः गूढ़वादी था। और जब मैं आत्मविश्लेषण करता हूं तो स्वयं को इन दोनों के मध्य में पाता हूं।
0: विनोबा जी मानते हैं कि
1: जीवन में करने के लिए जो कुछ भी सूझा उसे करने के लिए शास्त्र ग्रंथों के अलावा शंकर, ज्ञानदेव, महात्मा गांधी, इन तीनों की ओर से सबसे अधिक मदद मिली। गांधी जी के विचारों का और ग्रंथों का अध्ययन तो हुआ, साथ में उनका सहवास लाभ भी प्राप्त हुआ। उन्होंने जो सेवा कार्य खड़े किए थे उनमें से कुछ सेवा कार्यों में मेरा तारुण्य काल का जीवन बीता। महापुरुष संशय जिसे कहते हैं उसका पूर्ण लाभ सही अर्थों में मिला। संगति, विचारों का लाभ और उनके साथ काम करने का अवसर, ये तीनों का संगम ही महापुरुष संशय होता है, वह मुझे मिला। आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा उपकार मुझ पर है, कारण तत्व ज्ञान संबंधी जो तार्किक शंका मन में उठ रही थी उनका निरसन करने में आदि शंकराचार्य की सर्वाधिक मदद मिली। उनके विचार ऋण सर्व मेरी नसों में हैं। ज्ञानदेव का उपकार किन शब्दों में मानूं, वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वह तो चिंतन में है, हृदय में है, मेरी कार्य पद्धति में है, इतना ही नहीं मेरे शरीर पर भी है। इन सब का इतना परिणाम हुआ कि मैं मूलतः बहुत कठोर व्यक्ति हूँ, या यूं कहिए कि एक बेढंगा पाषाण। इस पाषाण को शंकराचार्य ने मजबूत बनाया, गांधी जी ने उस पर कामगिरी कर उसे आकार प्रदान किया, परंतु मेरे जीवन और हृदय में मिठास अगर किसी ने घोली, इस पाषाण से पानी निकालने का पराक्रम अगर किसी ने किया होगा तो सिर्फ ज्ञानदेव ने किया।
0: अंत में विनोबा जी आत्मविश्लेषण करते समय कहते हैं,
1: मैं जब स्वयं के बारे में विचार करता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, तब कुछ स्थूल भाग्य का स्मरण हो आता है और उनकी बहुत बड़ी दीवार सी बन जाती है, राष्ट्र सी बन जाती है। मुझे जो माता पिता मिले वो विशेष थे, ऐसा लोगों का मानना था। मुझे जो भाई मिले उनकी अपनी विशेषता थी, और जो मार्गदर्शक मिले वे तो निःसंशय लोक दृष्टि से महात्मा माने गए। जो स्नेही मित्र मिले वे सभी लोगों के प्रेम पात्र बने। जो विद्यार्थी मिले उन पर तो मैं स्वयं ही मुग्ध हूँ। इसके अलावा मुझे अनेक भाषाओं का ज्ञान होने के कारण अनेक संत पुरुषों का, धर्म पुरुषों का विचार रस सेवन करने का अवसर निरंतर मिलता गया और मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुख्य भाग तो वही है जो मेरा है, तुम्हारा है और सभी का है, और वह ये कि हम सब ईश्वर के अंग हैं, अवयव हैं, तरंग हैं। मुख्य भाग ये कि हम ईश्वर में समाविष्ट हैं। अगर यह अनुभूति हुई तो हमारा बेड़ा पार होगा।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे थके हुए मुसाफिर को देखा है जो अपनी दोपहरी में किसी अनजान शहर में भटक रहा हो? उसके पैर छालों से भर चुके हैं, गला सूख रहा है और वह हर दरवाजे पर जाकर खटखटाता है कि क्या मुझे यहाँ दो पल की छांव या ठहरने की जगह मिल सकती है? लेकिन दरवाजे के उसे यही जवाब मिलता है कि यहाँ जगह नहीं है, आगे बढ़ो। कोई भी उसे अपने यहाँ स्थायी ठिकाना देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि पराई सराय कभी किसी का अपना घर नहीं बन सकती। हमारा यह जो आत्मा है, यह भी जन्म जन्मांतरों से इस संसार की गलियों में एक सच्चे और स्थायी ठिकाने की तलाश में भटक रही है। हम धन में, मकानों में, रिश्तों में और पदों में ठहरना चाहते हैं, लेकिन हर जगह से अंत में खाली हाथ ही लौटते हैं। कबीर साहब आज हमें हमारी इसी भीतरी बेचैनी का असली कारण और एकमात्र स्थायी ठिकाने का पता बता रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र। सबको बुझत मैं फिरो, रहन कहे नहीं कोई। प्रीति न जोड़ी राम सु, रहन कहाँ ते होई। सबको बूझत मैं फिरो, रहन कहे नहीं कोई। सबको बूझत मैं फिरो, रहन कहे नहीं।

0: श्रोताओं, कबीर साहब जीवन की शाश्वत प्यास और उसकी लाचारी को बयां करते हुए कहते हैं, सबको बूझत मैं फिरो, मैं संसार के सारे पंडितों, ज्ञानियों, सांसारिक मित्रों और रिश्तेदारों से बूझत मैं फिरो, यानी बार बार पूछता फिर रहा हूँ कि इस मन को चैन कहाँ मिलेगा, मेरे आत्मा को सच्चा विश्राम कहाँ प्राप्त होगा, रहन कहे नहीं कोई, पर अफसोस कि कोई भी मुझे रहन यानी सदा के लिए ठहरने, टिकने और परम शांति पाने का कोई पक्का ठिकाना नहीं बता रहा है। सब अपने अपने भ्रम में यही उलझे हुए हैं। इस भटकाव की मूल जड़ को अगली पंक्ति में उजागर करते हुए कबीर कहते हैं, प्रीति न जोड़ी राम सू, हे जीव तूने दुनिया के न जाने कितने नश्वर लोगों और सांसारिक चीजों से तो दिल लगा लिया, लेकिन जो सबका मूल आधार है उस निराकार राम से तूने कभी कोई सच्ची प्रीति यानी गहरा आंतरिक प्रेम जोड़ा ही नहीं। रहन कहाँ थे होई, तो फिर तू ही बता कि तुझे रहना यानी स्थाई विश्राम और शांति कहाँ थे, यानी कहाँ से मिल सकती हैं। जब तक तू अपने मूल से नहीं जुड़ेगा तब तक तेरी यह भटकन कभी समाप्त नहीं हो सकती। यह दोहा अधिष्ठान और भक्ति योग का महासिद्धांत है। उपनिषदों में कहा गया है, आनंदो ब्रह्मोति व्यंजनात्, अर्थात आनंद ही ब्रह्म है। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील और क्षणभंगुर है। जो चीज खुद अपनी जगह पर टिकी हुई नहीं है वह किसी दूसरे को क्या सहारा देगी। रहन का अर्थ केवल किसी मकान में रहना नहीं बल्कि चेतना का अपने आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाना है। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक मनुष्य उस अविनाशी ब्रह्म से प्रेम का धागा नहीं बांधता तब तक वह चाहे जितने स्वर्ग या तीर्थ घूम लें वह आध्यात्मिक रूप से बेघर ही रहेगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ को रोककर खुद से पूछिए कि हम किस चीज में सुकून तलाश कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े मकान बना लिए, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन क्या हमारा मन एक पल के लिए भी शांत हो पाता है? हम बाहर से तो अपने घरों में बैठे हैं पर भीतर से आज भी बेघर और अशांत भटक रहे हैं। आज कोशिश कीजिए अपने इस भटकाव को विराम देने की। इस संसार की नश्वर चीजों से अपनी उम्मीदें हटाकर उस राम नाम में अपना सच्चा नाता जोड़िए। जब आपका प्रेम उस शाश्वत परमात्मा से जुड़ जाएगा तो आपको अपने ही भीतर वह परम धाम मिल जाएगा जहाँ न कोई भय है, न कोई चिंता और केवल अखंड शांति का साम्राज्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मनभावन 90.8 FM प्रस्तुत योग सूत्र विवेचन माला, अध्यात्म, मनशांती आणि जीवन दर्शन यांचा सुरेख संगम, श्रीमद भगवत गीतेच्या संदर्भातून पातंजल योग दर्शनाचा सखोल प्रवास, पातंजल योग दर्शन अर्थात मनाचे शास्त्र या प्राध्यापक भगवत भरंबे लिखित ग्रंथाचं क्रमशः वाचन, वाचक स्वर योगाचार्य डॉक्टर देवानंद सोनार, संचालक सोहम योग अँड नॅचरोपॅथी, KC सोसायटी संचलित मूज जेठा महाविद्यालय जळगाव। ऐकायला विसरू नका 1 जानेवारी 2026 पासून दररोज सकाळी 8 वाजता आणि पुनःप्रसारण दुपारी 4 वाजता योग सूत्र विवेचन माला आपल्या रेडिओ मनभावन 90.8 FM वर। ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: एपिसोड क्रमांक

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जीवन को जीने के लिए जो हमें नहीं मालूम थी और शायद इसीलिए हमारा जीवन इतना खाली था। अपने विचारों की ताकत को समझा कि कितने पावरफुल हैं हमारे थॉट्स और कितनी तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। सबसे पावरफुल और डैमेजिंग थॉट्स, जो टॉक्सिक थॉट्स जिनका हम देखते हैं, उनका हमें पता चल जाता है कि किस तरह से, चाहे वो गुस्सा है, नफरत है या ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और दूसरी तरफ देखें तो हमारे साथ पॉजिटिव थॉट्स हैं, राइट थॉट्स हैं, एलिवेटेड थॉट्स हैं। हमारे साथ जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी दोनों हैं, उनसे बात करते हैं इस थॉट पावर के बारे में। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, जो डिफरेंट तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं उनको हमने डिटेल में जानने की कोशिश की है, अभी बात हमने करनी है राइट थॉट्स और एलिवेटेड थॉट्स। व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय राइट थॉट्स?
1: सबसे पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग लोगों को मुश्किल लगता है, परंतु एक आम व्यक्ति भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि परिस्थिति जैसी है वैसी ही हमें देखनी चाहिए। म्यूजियम में जब हम जाते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में नहीं, कोई मोटा दिखता है, दुबला दिखता है, ऊंचा दिखता है तो हम हंसते, अच्छा नहीं लगता है। परंतु सचमुच यही हम अपने जीवन की परिस्थितियों के साथ कर रहे हैं, परिस्थितियों को विकृत रूप दे रहे हैं। ऐसा तो कम से कम नहीं करना चाहिए। परिस्थिति जैसी है वैसी ही देखे। करीब 9 अलग अलग प्रकार के मिरर्स में हम अपने आप को देखते हैं। इसको कहेंगे रॉन्ग थॉट्स। उस रॉन्ग थॉट्स को समझ लेंगे तो फिर राइट थिंकिंग करना भी सहज होगा।
0: तो मतलब किस तरह से जो है वो हम अपने जो पूरी सिचुएशंस हैं उनको देखें। इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, जब पिछली बार बात हुई थी कि पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं, कैसे क्रिएट किया जाए, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो क्रिएट नहीं कर पाते। यू नो, समझ भी रहे हैं क्योंकि फील गुड के साथ हमने जोड़ा था कि वेदर इट्स अ पॉजिटिव थॉट और अ नेगेटिव थॉट, लेकिन वो हो नहीं पा रहा प्रैक्टिकली। यहाँ बैठ के फॉर्मूला की तरह बात करें तो लगता है कि ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे सिचुएशंस में आते हैं, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट।
2: छोटी सी एक्सरसाइज करके देखें। एक, कुछ समय के लिए अपने आप को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से बचा के रखें। अर्ली इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, टू मच ऑफ न्यूज इन द टेलीविजन, बहुत सारे विजुअल्स एंड ऑडियो जो हम नेगेटिव भर रहे हैं, ये हमारी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो कुछ दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करें और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने अंदर भरना शुरू करें। हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के 130 कंट्रीज में 8500 से ऊपर सेंटर्स हैं। इतने सेंटर्स क्यों चाहिए? हर शहर में हम जहाँ भी रहते हैं विदिन 5 to 6 किलोमीटर्स एक सेंटर है। ये किस लिए चाहिए? ताकि सभी भाई बहनें वहाँ पर आकर आधे घंटे के लिए, चाहे सुबह चाहे शाम, प्रेफरेबली सुबह, परमात्मा का वो ज्ञान लेते हैं, विच इज़ द हाइएस्ट सोर्स ऑफ प्योर पॉजिटिव एलिवेटेड इन्फॉर्मेशन। तो हमने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया कि सुबह सुबह अखबार रेडियो टेलीविजन की बजाय सुबह सुबह ज्ञान लेना शुरू किया। इतना सा परिवर्तन, पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरल होने लगा। जो भोजन खाएंगे वही एनर्जी क्रिएट होगी। तो एक तो ये ट्राई करें कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन स्टॉप, ट्राई टू क्रिएट कुछ एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ले। दूसरा, सारा दिन कॉन्शियस अटेंशन। और तीसरा,

0: जैसे पहले भी गिरीश भाई ने कहा, लिखो, लिख दे, ये नेगेटिव थॉट मेरे अंदर आ रही है, लेट्स से ये काम मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं करने की भी कोशिश करता हूँ ना, लोग इसमें ऑब्स्टिकल डालते हैं, यू नो द होल सीरीज, राइट इट डाउन और अब बैठ कर उसका पॉजिटिव लिखे कि इस सिचुएशन में मुझे पॉजिटिव क्या सोचना है. इट्स लाइक अ चाइल्ड लर्निंग टू राइट एंड रीड, नाउ लर्निंग टू थिंक. हमने कभी राइट सोचना ये नहीं सीखा था. एक बच्चे की तरह हमें ए बी सी डी से इसको स्टार्ट करना होगा. तो लिखें, उस नेगेटिव को लिखें, और फिर किसी और को अगर समझाते तो क्या पॉजिटिव समझाते उस समय, तो अपने आप को वो पॉजिटिव समझाएं, उसको लिखें, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत जल्दी इट विल बिकम अ नेचुरल प्रोसेस.
1: एक्सरसाइज करने से मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज करेंगे तो आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा.
2: डॉक्टर पटेल, आपने कहा कि कई तरह के राइट थॉट्स हैं, अगर पॉजिटिव हम नहीं भी क्रिएट कर पाए, आपने हमें थोड़ी सी सहूलियत दी थी कि जो भी सिचुएशन है उसको वैसे ही देखें, लेकिन शायद हम भी अवेयर नहीं है कि हम कौन से वो नौ मिरर्स लगाकर हैं, वो हमारे साथ अगर आप शेयर करें.
1: सबसे पहला तो है कि मैग्नीफाइंग मिरर, कि परिस्थिति है 20% प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम 90% बना देते हैं,
2: हाइपर हो जाते हैं जो,
1: तो मैग्नीफाइंग ना करें. हम ये पहले जज करें, थोड़े डिटैच होकर कि ये समस्या है, परंतु कितनी है, 10% समस्या है, तो 10% ही मुझे सोचना है, उसको 15% भी नहीं करना है. ये मैग्नीफाइंग भी हम खत्म कर दे तो बहुत बड़ा फायदा होगा.
2: वेरी ट्रू. यू नो, बच्चा का रिजल्ट वहां से स्कूल से कुछ आ गई, एक कॉल आ गए, और भाई की पेरेंट टीचर मीटिंग में कुछ कह दिया, किसी और चीज
1: का,
2: हस्बैंड के बारे में कुछ पता चल गया, छोटा सा एक
0: सीख, जैसे भाई साहब ने कहा ना, मेकिंग अ बिग इश्यू आउट ऑफ इट. जब कोई और एक बड़ा इश्यू बना रहा होता है ना, हमें दिखाई दे रहा होता है, देखो बात तो इतनी सी है और इसको ये क्या बना रहे हैं, तो डिटैच होकर जब देखते हैं, हमें क्लियर दिखाई देता है परिस्थिति इतनी है, इसको ये देखो कितना बड़ा बना रहे हैं. अब सिर्फ वो चीज अपने में देखनी है. दूसरे को तो कहना इजी है कि बात तो बहुत छोटी है, आप उसको बहुत बड़ा बना रहे हो, ये बहुत कॉमन हमें दिखाई देता है आज. अब सिर्फ जो औरों के अंदर दिखाई देता है, उसको अपने अंदर देखना है कि कैसे हम छोटी बात को कितना बढ़ाते.
2: तो जब भी हमें लगे कुछ बड़ा हो रहा है, बहुत मुश्किल हो गया, वी शुड स्टॉप
1: इवन एवरीथिंग. जो भी हमारे में थोड़ा भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, सोचे कि भी मैं मैग्नीफाइंग तो नहीं कर रहा हूँ, सचमुच परिस्थिति कितनी है, बस उतना ही उसे इम्पोर्टेंस देना है, ज्यादा नहीं देना है. दूसरा है ऑल और नन अप्रोच, कि व्यक्ति जो है परिस्थिति वो एक्सट्रीम में सोचता है, उसके लिए समस्या ब्लैक एंड वाइट ही होती है, परंतु जीवन ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इट इज डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे. एक आपको उदाहरण दूंगा, एक डॉक्टर का बच्चा 10वीं कक्षा में था, तो उसके फादर ने कहा बेटे मेडिकल में एडमिशन चाहिए, मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो 95% होने चाहिए. उसने मेहनत तो की, परंतु अनफॉर्चुनेटली उसके 88% आए. तो पिताजी ने क्या क्या सुनाया उसे, कि बस मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अभी तुम कोई काम के नहीं रहे, कम से कम 90 तो आने ही चाहिए थे, मैं किसको मुंह नहीं दिखा सकता हूँ, मेरे बेटे के 88% ही आए, ऐसे एक दो घंटा खूब सुनाया. तो बच्चा एकदम साइलेंस में चला गया. पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद उसको शॉक लगा है कि कम परसेंटेज आए, हमने भी उसको डांटा, लेकिन सच मानिए 2 दिन के बाद वो पागल हो गया. आज भी वो पागल है, कई साइकेट्रिस्ट ने उसका इलाज किया है, मैंने भी उसका इलाज किया, वो ठीक नहीं होता है. भले एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, परंतु फिर भी
2: इसके लिए वो माँ बाप का एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट होगा.
0: नहीं, लेकिन ये एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन हमें ये मैग्नीट्यूड तो दिखा सकता है ना, कि हमारी जो ये बातें हैं जो हम कह देते हैं उस समय, वो चलो हमारे बच्चों पर कितना इम्पैक्ट डाल रही है. ठीक है, हर बच्चा इस एक्सट्रीम पे नहीं जा रहा, लेकिन कुछ तो डैमेज हर एक का हो रहा होगा जब इस तरह से बोला.
1: सुसाइड करते हैं कई बार, तो ये ऑल और नन अप्रोच का ही वो हिस्सा है. अब इसमें राइट थिंकिंग क्या होता, अगर वो बच्चे को ये कहा जाता कि बेटा हमारे कम से कम 90 का एक्सपेक्टेशन था, तुम्हारे 88% आए, अभी चलो देखते हैं, प्रॉब्लम इज देयर डेफिनेटली, लेकिन आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की, आप अपनी स्टडी टेक्निक को कैसे इम्प्रूव कर सकते थे, हम आपको क्या मदद कर सकते थे, इस सब बातों के बारे में अच्छे से सोचा होता, कोई ठीक से प्लान बनाया होता, तो HSC में जरूर उसके 92 या 95 आते. तो दिस इज राइट थिंकिंग ऑफ दैट नो ऑल और नन अप्रोच.
2: इनफैक्ट लुकिंग एट द सिचुएशन इन द रियल सेंस
0: एंड एक्चुअली ट्राई टू मेक द सिचुएशन स्मॉलर.
1: या बेस्ट इज स्मॉलर.
0: ये भी करो कि कई बार अगर क्योंकि हमें नहीं पता चलता, हमें लगता है बात तो हमारे लिए बहुत बड़ी, अगर कोई और भी हमें कहे कि इतनी बड़ी बात नहीं है, हम कहेंगे आपको क्या पता, ये बात तो मेरे सामने आई है ना।
2: कई बार ऐसा भी हो रहा था कि अगर मैंने अभी नहीं कहा तो इनको समझ नहीं आएगा, यू नो लाइक वी शुड हिट इट व्हेन इट्स हॉट, दैट्स व्हाट वी से।
0: एम हैज टू बी कि कितनी भी बड़ी हो हमें उसको बिल्कुल बिल्कुल छोटा करना है, बिल्कुल छोटा करना है। और ये एक गेम है, यू नो जितना करते जाओगे यू विल रियलाइज कि एक्चुअली बातें तो कुछ भी नहीं होती हैं। हम उनके बारे में सोच सोच के, बोल बोल के, आपस में डिस्कस करके उसको कितना बड़ा बनाते हैं। टेक इट लाइक अ गेम, एक गेम को खेलो कि आपके सामने एक चीज़ आई है जो बहुत बड़ी है, आपको उसको एकदम छोटा करना है। एवरीबडी नोज हाउ टू डू इट, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू डू इट।
2: Why we don't do it?
0: See again, power नहीं है ना, हम बहुत डर जाते हैं एकदम से। अभी इस केस में भी डर गए ना, कितने सारे thoughts आ गए होंगे, fear of future, क्या होगा बच्चे का, क्या होगा मैं लोगों को क्या कहूँगा, मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बना, उसका तो बच्चा डॉक्टर बन गया। Look at the series of thoughts that will come. उस समय ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे का कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ सोच लिया, तो जो important था वो तो सोचा ही नहीं। और इतने सारे थॉट्स जितने बनते, एंड दैट्स व्हाई वी से सिचुएशन उतनी ही बड़ी है जितने आपके थॉट्स उसको बनाते हैं, और कुछ भी नहीं है। जितना आप इससे थॉट क्रिएट करेंगे क्या होगा कैसे होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट द सिचुएशन इज वेरी वेरी बिग। इट विल सीम टू यू कि इससे बुरा तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं
2: सकता। वो बना ही देते हैं फिर फाइनली, वो बनी जाती है
0: क्योंकि हम उसके साथ इतने सारे चीजें अटैच कर रहे हैं ना, लोग क्या कहेंगे, इसका फ्यूचर क्या, इसकी शादी नहीं होगी, आगे करियर, मतलब सो मेनी थिंग्स वी विल अटैच। तो बात तो बड़ी लगेगी उस टाइम। अब हमें डिसाइड करना है उस सिचुएशन में कैसा सोचेंगे, तो सिचुएशन एकदम उतनी छोटी हो जाएगी।
1: ये भी पक्का कर ले, बस राइट थिंकिंग करना है ना, सही मिरर में अपने आप को देखना है, ऑल और नन के मिरर में बिल्कुल नहीं देखना है। तीसरी बात है जंपिंग टू कंक्लूशन, कि कुछ होता है तो तुरंत हम कुछ निर्णय पर आ जाते हैं, बस ऐसे ही है।
2: और अब भी लेना डिसीजन, अब भी लेना, अब भी करना है, यू नो ये जो एक हमारे पास बिल्कुल वक्त ही नहीं रह गया कि अभी मैंने सिचुएशन में डिसीजन नहीं लिया तो कुछ कुछ गलत हो जाएगा। ये
1: व्यक्ति के बारे में भी हम वी जंप टू कंक्लूशन। एक कंपनी में प्रेसिडेंट थे, उस कंपनी का यूनियन लीडर सवेरे सवेरे उन्हें मिलने आया, सेक्रेटरी को आके कहा कि साहब को मिलना है। तो सोचा अरे सवेरे सवेरे यूनियन लीडर, मतलब बहुत सारी डिमांड लेकर के आया होगा, बस समस्या होगी, अभी मॉर्निंग में नहीं चाहिए। उसको कहा कि कहो कि साहब अभी बिजी है, कुछ देर के बाद आना। फिर से आया, सोचा जरूर इसकी बहुत डिमांड होगी, कहा नहीं नहीं थोड़ी देर के बाद आना, अभी साहब मीटिंग में बिजी है। ऐसे उस दिन वो 5 बार आया, लेकिन कोई ना कोई बहाना बता करके उसे वापस भेज दिया, क्योंकि जंप टू कंक्लूजन दैट यूनियन लीडर मीन्स प्रॉब्लम्स। फिर 7 दिन तक वो दिखाई नहीं दिया, 8वें दिन रास्ते में मिल गया। तो उन्होंने सोचा अभी तो पूछूं, अब तक तो उसकी डिमांड शायद बहुत कम हो गई होगी, अब उसको पूछता हूँ और सॉल्यूशन लाता हूँ। तो कहा भैया क्या उस दिन तो आए थे, क्या प्रॉब्लम था? उसने कहा नहीं नहीं साहब वो काम तो हो गया। कहते नहीं नहीं बताओ कुछ तो होगा, मैं तुझे मदद कर सकता हूँ। कहा नहीं नहीं साहब कुछ नहीं कर सकते। कहा नहीं कुछ तो कर सकते, बोलो क्या था। कहा नहीं नहीं साहब वो काम तो हो गया। कहते क्या हुआ? कहते साहब मेरे बेटे के मैरिज थे, मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया था, कल ही मैरिज सेरेमनी पूरी हो गई, आज मैं काम पर आ गया, वो तो हो गया। तो देखो जंपिंग टू कंक्लूजन कि भी यूनियन लीडर मींस वो डिमांड लेकर के आया होगा, तो एक बहुत अच्छा सा मौका गवा दिया।
2: तो हाँ, क्योंकि रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा डेवलप कर सकता था,
1: डेवलप होता उससे। तो ऐसा कभी नहीं करना है। कुछ भी हो, नेवर जंप टू कंक्लूजन।
2: ओह यस, सो मेनी टाइम्स वी डू दैट, यस
1: यू नो, हर परिस्थिति तो एक है। तो बस एनालिसिस करना है, क्या बात है, अच्छे से एनालिसिस करूं और फिर सोचूं कि क्या करना।
2: और पहले सुन तो ले, पहले हम देख तो नहीं कि हाँ। है क्या है,
1: ठीक से एनालिसिस कर
0: ले। रहे हैं हम उसको भी नहीं ले रहे होते, हम फिर भी कुछ और सोच रहे होते हैं,
2: पहले तय कर रहे होते हैं।
0: कोई अगर हमसे अच्छी तरह से भी बात कर रहा है, उसके पीछे भी हम सोच रहे होंगे इसके पीछे क्या, इसको क्या चाहिए मेरे से, ये मेरे से इस तरह से बात कर रहा है। वैसे यू नो सो मच, दिस इज ऑल्सो जम्पिंग टू सो मेनी कंक्लूजन। और उसकी वजह से वो जो अच्छी सीन भी आपके सामने आई थी उसमें भी आपकी थिंकिंग किस तरफ चली गई, इट वेंट टुवर्ड्स रॉन्ग थिंकिंग। So situations are positive, लेकिन हमें आदत पड़ गई है उस positive situation में भी कोई ना कोई इस तरह की wrong thought create करने की।
1: जब भी thought है तभी सोचना है कि इसमें से कोई तो मैं नहीं कर रहा हूँ। चौथा है always mentality।
2: एक सेकंड पहले हम थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करते हैं कि पहला था मैग्नीफाई, ऑल और नन, मतलब या तो मुझे सब कुछ मिले या कुछ नहीं, एंड थर्ड इज जंपिंग टू कंक्लूजन, फोर्थ हम आते हैं,
1: फोर्थ इज ऑलवेज मेंटालिटी, अच्छा भी कुछ हुआ हम समझते सदैव मेरे साथ ही होता है,
2: अच्छा ऑलवेज मी,
1: हाँ ऑलवेज मी, कि जब अगर बॉस आपको डांट दे तो सोचते बॉस ऑलवेज मुझे ही डांटता है, या तो मुझे ही सदैव डांट पड़ती है,
2: मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, होता है हाँ। मेरे साथ जिंदगी में ये हो, मेरे अपनों के साथ होता रहता है, मेरे बच्चों के साथ ही होता है, मेरे साथ जिंदगी में ये चलता है,
1: मेरे साथ सदैव बुरा होता है,
0: विक्टिम फीलिंग भी आ
1: जाती, बिल्कुल
0: सो मच ऑफ अ विक्टिम फीलिंग, ये मेरे साथ ही हो रहा है सारा कुछ,
2: लेकिन अगर ये होता जा रहा हो तो
1: नहीं, तब भी डिटैच हो गए, अगर सचमुच नहीं कितना भी बुरा होता आप सोचेंगे ना, कुछ बातें अच्छी भी हुई है, भल कुछ बुरी भी हुई है, लेकिन 20% 25% अच्छी बातें भी हुई है, उसका भी एक लिस्ट रखना चाहिए कि भी अच्छी बातें हुई है, हो सकता है भी मास में एक बार कुछ हुआ, 6 मास में एक बार हुआ, ये सदा सदैव नहीं होता है, ये भी इसमें राइट थिंकिंग करना चाहिए कि भल मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, औरों के साथ और प्रॉब्लम भी होते हैं, है ना, क्योंकि मुझे अपना ही दिखाई देता है इसलिए मैं सोचता हूँ कि आई एम ओनली सफरिंग, तो इस प्रकार से जो ऑलवेज मेंटालिटी है उस पर भी विजय प्राप्त करना जरूरी है।
0: एक बार हम एक काउंसलर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा लोग आते हैं इतनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं अपनी, और उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद लगता है मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उससे पहले हम अपनी इतनी सी भी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाकर बैठे थे। एक बार हम ऐसे एक ग्रुप में बैठे और हर एक से पूछा आपके जीवन में चिंता का कारण क्या है, एवरीवन जस्ट शेयर व्हाट्स द कॉज ऑफ योर स्ट्रेस। तो एक कपल था, उन्होंने कहा हमारे बेटे को चश्मा लग गया है बहुत यंग एज में, छोटा सा था अबाउट 7-8 years old, कि हमारे बेटे को चश्मा लग गया है, ये सोच सोच के तो हमें बहुत चिंता हो रही है। तो साथ में किसी और ने कहा कोई और प्रॉब्लम नहीं आई है ना सामने अभी, तो इसी बात को लेकर सी मतलब एक मेंटालिटी बन गई है कि कोई ना कोई बात को लेकर तो मुझे करनी ही है वो थॉट। तो अब जैसे ही अब अगर ये थॉट है कि मेरे बच्चे को चश्मा लग गया, जिस दिन कोई और बड़ी बात आ जाएगी ये बात कोई बात नहीं लगेगी, और यही अगर हम प्रैक्टिस करें कि हर सीन में पॉजिटिव, तो कितनी भी बड़ी बात आ जाएगी हमें वो बात वो नहीं लगेगी। इट हैज बिकम आर यू नो पर्सनैलिटी, आर नेचर टू थिंक ओनली ऑन द वरी एंग्जाइटी नेगेटिव साइड, इसीलिए वो हर टाइम लगता है कि आई एम द विक्टिम, मेरे साथ थोड़ा सा भी कुछ मेरे साथ हुआ तो मेरे साथ ही ऐसा होता है। दिस इज अ वेरी डीप संस्कार जो हमारा बनता जा रहा है कि हर टाइम मेरे साथ ऐसा होता है, एंड हर टाइम जो मेरे साथ बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं
2: वो मैं देखती
0: हूं, दैट इज इग्नोर्ड।
2: क्यों नहीं, क्यों मुझे विक्टिम बनना आसान लगता है क्या? विक्टिम बनते ही जिम्मेदारी किसी और की हो जाती है, ऐसा है,
0: और उदास फील करना जस्टिफाइड हो जाता है।
2: पर हम उदास, अच्छा उदास तो हम फील, हम उदास फील तो नहीं करना चाहते ना, लेकिन हम फील कर रहे हैं,
0: उदास फील कर रहे हैं, अब हमें कोई चीज चाहिए जिसके ऊपर हम उसकी ब्लेम डालते हैं,
1: जस्टिफिकेशन
0: है ना कि सिचुएशन ये मेरे साथ हर बार ऐसी हो रही है, हाउ कैन आई बी हैप्पी, दैट इज द थिंग। जैसे ही कोई रीजन मिल गया ब्लेम करने के लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, एंड आई टेल माई सेल्फ ये ठीक है, आप जैसा फील कर रहे हो ऐसा ही फील करना है इस परिस्थिति के अंदर, एंड देन वी लिव विद दैट पेन फॉर अ लॉन्ग टाइम।
2: हमने कितनी सारी अपनी जस्टिफिकेशन तो परिस्थितियां तैयार की हुई हैं,
1: और ऐसा सोच के हम औरों की सिंपथी गेन करना भी चाहते हैं कि जब जस्टिफिकेशन है तो लोग मुझे सिंपथी देंगे। छठी बात है लेबलिंग, हमने आगे भी डिस्कस किया था, लेकिन राइट थिंकिंग में भी हम कई बार गलत रूप से लोगों को लेबल करते हैं। आपके अंडर में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से आप लेबल करते हैं कि ये स्मार्ट है, ये बिल्कुल गलतियां करता रहता है, और जब आप लेबल करते हैं तो इमीडिएटली वो आ जाता है कि इसने किया गलत ही किया होगा, वो भी रॉन्ग है। कभी भी लेबल किसी को नहीं करो।
0: जैसे सपोज कोई टाइम पर नहीं आता तो हम कहते हैं ये तो है ही लेट लतीफ, ये तो हमेशा ही लेट आएगा, इसको कितना भी बोल दो ये नहीं। सो दिस इज नो, दैट पर्सन माइट बी सिंसियरली ट्राइंग टू कम ऑन टाइम, नाउ ही जस्ट नीड्स द राइट एनर्जी।
2: हमने रजिस्टर किया तो रजिस्टर करके हमारे पास तो रहती है वो वीकनेस।
0: जैसे हम लेबल कर देते हैं ना, इट फील्स के ये ऐसा ही है, मतलब देयर इज नो मार्जिन टू चेंज। वो है कि किसी के ऊपर जैसे ना स्टैंप लगा दी कि ये तो है ही ऐसा, एंड फिर वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मेरे तक नहीं, वो लेबल और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर होता है, और सभी फिर यही लेबल से वर्क करते हैं। आप उस व्यक्ति को उस लेबल के थ्रू देखना शुरू करते हो, यू नो नहीं ये तो है ही ऐसा. तो इवन इफ ही इज ट्राइंग टू चेंज, अगर कोई टाइम पे आएगा ना आज, कहेंगे बाय चांस आज टाइम पर आ गया.

0: हम बोल
1: बोलते
0: देते हैं
1: नहीं
0: एक
1: है
0: दूसरे
1: कि
0: को
1: आज
0: उसके।
1: तो
0: हाँ
1: सूरज नहीं निकला, सूरज कहाँ से निकला, आज आप टाइम पे कैसे आए, और ये सब कुछ। यस
2: सातवीं बात है वाई मी एटीट्यूड। वाई मी एटीट्यूड का बहुत ही अच्छा उदाहरण है आर्थर एशे, कि जो विंबलडन में लीगेंड थे, उनको वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, और जब रिटायर हुए उसके कुछ समय के बाद उनको कैंसर हुआ। तो एक उनके फैन ने लिखा कि भी कैसी दुखद बात है कि आप इतने फेमस व्यक्ति थे, आप इतने हाई पोजीशन पर पहुंचे थे, फिर भी भगवान ने आपको कैंसर दे दिया। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भी 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलने की कोशिश करते हैं, उसमें से करीब 50 लाख ही है, या तो 5 लाख ही उसको अच्छे से सीख पाते हैं। उसमें से जो प्रोफेशनल है 50 हजार ही बनते हैं, उसमें से 50 ही विंबलडन तक पहुंचते हैं, उसमें से 8 ही है जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं, 4 ही सेमीफाइनल में होते हैं, 2 ही फाइनल में पहुंचते हैं, और अंत में 1 ही चैंपियन ऑफ द चैंपियन डिक्लेयर होता है। जब मेरे हाथ में कप था और मेरा नाम चैंपियन ऑफ द चैंपियन में दिया गया था, तब मैंने भगवान को यह नहीं कहा वाई मी। तो आज मुझे बीमारी हुई है तो भी यह नहीं कहना चाहिए वाई मी। तो बस यही बात, इससे बहुत प्रेरणा मिल सकती है। कोई भी समस्या आए कभी यह नहीं कहो वाई मी। यह सोचो कि भी मेरे को यह प्रॉब्लम है, औरों को और कुछ प्रॉब्लम है,
1: इट्स
2: उल्टा
1: पार्ट ऑफ द प्रोसेस
2: प्रोसेस।
1: एक्चुअली।
2: हाँ, उल्टा कहते हैं वाई मी नहीं कहो, ट्राई मी लॉर्ड।
1: तो ये हमने 7 तरह की अपने रॉन्ग थॉट्स को, ये दीज आर द रॉन्ग थॉट्स ना,
2: दिस हाँ, उसको
1: जिसको
2: रॉन्ग
1: हमने
2: थॉट्स को
1: राइट
2: भी
1: में
2: राइट में
1: कन्वर्ट
2: करना,
1: करना। आपने
2: हरेक
1: कहा
2: को।
1: 10 होते हैं।
2: हाँ, और भी 8वां जो है, जिसको कहा फ्लाई मेंटेलिटी,
1: ओ भागना।
2: नहीं मक्खी की जैसी मेंटेलिटी।
1: अच्छा
2: कहते
1: अच्छा हाँ
2: भी मक्खी के सामने मिठाई भी रखो और गंदगी भी रखो तो कहाँ बैठेगी, गंदगी पे ही बैठेगी। तो ऐसे ही लाइफ में भी होता है कि भी जीवन में अच्छी भी बातें हैं, बुरी भी बातें हैं। जिनके पास फ्लाई मेंटेलिटी, वो व्यक्ति बुरे पे बैठता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। बस ये भी सोचना चाहिए कि भी मेरे में फ्लाई मेंटेलिटी तो नहीं है, बस दोनों चीजें साथ साथ है, मुझे अच्छे पे ही बैठना है। 9वीं बात है जिसको कहते हैं नॉटिंग। नॉटिंग मतलब क्या है कि भी कोई चीज को हम फोर्सिबली भूलने की कोशिश करते हैं। कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि भी उनको पढ़ाई करनी है परंतु तो दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा है, या तो आप पूजा भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा है, तो आपका ध्यान कंटिन्यूअस वो टीवी के प्रति है। आप फोर्सिबली उसको भूलने की कोशिश करते हैं, भूल नहीं पाते, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, उल्टा टीवी का प्रोग्राम और क्लियरली आपको सुनाई देता है, तो ये नॉटिंग भी नहीं करे। अगर नॉटिंग होता है तो ये सोचो कि टीवी को भूलना नहीं है, मुझे पढ़ना है, मुझे जो कंसंट्रेशन पढ़ाई में देना है। अगर पढ़ाई में मैं कंसंट्रेट हो गया, ऑटोमेटिकली टीवी से ध्यान चला जाएगा। मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे मेडिटेशन में कंसंट्रेट करना है, ऑटोमेटिक मेरा ध्यान है वह वहां से हट जाएगा।
1: क्योंकि वो तो वहां एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, उसकी एग्जिस्टेंस को तो आप डिनाई नहीं कर
2: नहीं कर
1: सकते।
2: सकते, हाँ, लेकिन उसको हमें फोर्सिवली नहीं भूलना है।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, इट्स नॉट पॉसिबल। सी, यूजुअली जब आप पढ़ रहे हैं और टीवी चल रहा है, मन वहां है, तो आपका मन वहीं जाता ही है।
0: इसलिए क्योंकि वो चीज़ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट करती है। माइंड कहाँ जाएगा, जो दोनों में से आपको चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्ट करेंगी। यही अगर आप टीवी देख रहे हैं, सपोज आप टीवी देख रहे हैं और एक्चुअली कोई आपको बुला रहा है कि पढ़ लो, शोर भी मचा रहा है, आ जाओ पढ़ लो, आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे क्योंकि आपका पूरा इंटरेस्ट किस में है, टीवी देखने में। प्रोवाइडेड यू आर डूइंग समथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग यू, आपको दूसरी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इसी में हमें अपने आप की फिर थॉट्स को चेंज करनी है कि वहाँ एक चीज़ चल रही है, यहाँ एक चीज़ चल रही है, मेरे लिए इस समय कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। फिर अपने आप, इट्स सेड के वेर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो देयर। नाउ इट्स इम्पोर्टेंट कि आपकी अटेंशन कहाँ जाए, हमारी अटेंशन एक्चुअली वहाँ जाती है तो फिर एनर्जी भी उसी तरफ जाएगी। लेट मी फोकस कि ये मुझे ये करना है, नहीं हो रहा है, माइट एज वेल गो एंड सिट देयर। लेकिन ये जो संघर्ष चलता रहेगा, इट वॉन्ट हैपन। एंड वो सिर्फ इस चीज़ों में नहीं, सारा दिन में बहुत सारी चीज़ों में चल रहा है, ऑफिस में भी काम मुझे अपने पर करना है, इवन वट एवर वर्क आई एम डूइंग, लेकिन मेरा ज़्यादा ध्यान दूसरी चीज़ों में जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, देन आई एम ट्राइंग टू फोर्सफुली टेक माई सेल्फ बैक फ्रॉम देयर। इन द अदर वे अराउंड, मुझे क्या करना है एंड आई फोकस माई एनर्जी टोटली ऑन दैट, अपने आप अटेंशन वहाँ से हटेगा। मतलब वो कुछ और चीज़ भूलने की बजाय इसको याद करना है। जैसे परमात्मा भी हमें सिखाते कि मुझे

0: गुस्सा नहीं करना ये नहीं सोचना है. आई एम अ पीसफुल सोल, इस पर अटेंशन रखना है, एनर्जी विल ऑटोमेटिकली गेट क्रिएटेड. नहीं तो वो माइंड और भी उसके कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है,
1: जा रहा है तो फिर अटेंशन उधर ही
0: उसी तरफ चला जाता है.
2: और दसवां है डिसक्वालीफाइंग द गुड. कई बार अच्छी चीजें होती है हमारे जीवन, लेकिन उसको भी हम डिसक्वालीफाई करते हैं. एक महिला ने एक दिन बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, तो लोगों ने बहुत उसको प्रेज किया कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, बहुत अच्छी साड़ी. सबको कहते क्या बेकार की साड़ी है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं पहनती हूँ, आज कोई मौका कुछ नहीं मिला तो इसी को पहनना पड़ा, क्योंकि मेरी सास ने प्रेजेंट की थी. तो दिस इज डिसक्वालीफाइंग द गुड, नो सो मच गुड वॉज देयर, नो शी कुड हैव इम्प्रूव हर सेल्फ एस्टीम, औरों को भी अच्छा लगता, शी वुड हैव फेल्ट गुड ऑल्सो अबाउट इट, लेकिन उसको भी भाई सास ने प्रेजेंट की थी कह के सब कुछ वॉश आउट कर दिया,
1: क्योंकि वो एक थॉट के दी आया कहां से, वहां पे रिश्ता ठीक नहीं था,
2: वो जरूरी नहीं था, कोई वो पूछ नहीं रहा था, लेबल भी नहीं लगा था कि किसने प्रेजेंट किया आपको. तो इसलिए जब भी अच्छा होता है रियली उसका हम आनंद ले, अपने स्वमान को बढ़ाए, इवन एंथुजियाज्म को इम्प्रूव करे, अच्छी चीज को भी डिसक्वालीफाई ना कर दे.
1: जो अच्छा है उसे अच्छा ही अच्छे रूप में ही देखें. सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, वक्त का पता नहीं चलता जब हम अपने विचारों के इस ताने बाने में उलझ जाते हैं, लेकिन आज जो बातें समझ में आई कि जो 10 तरह के ऐसे थॉट्स जिन्हें एक्चुअली अगर नेचुरली देखा जाए तो राइट होना चाहिए, बट हम किस मिरर से देखते हैं, आपने कहा कि कौन सा ग्लास लगाकर हम देख रहे हैं और सारी चीजें उल्टी होती जा रही. सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, थैंक यू सो मच. ओम शांति. आज हमने उन 10 सिचुएशंस को देखा, वो ऐसे थॉट्स जो शायद मैं अवेयर भी नहीं हूँ, मतलब ये चीजें अपने आप होती जाती रही हैं अभी तक जीवन में, लेकिन थोड़ा सा अगर बैठकर देखेंगे तो सचमुच, चाहे वो किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को मैग्नीफाई करने की बात हो, चाहे एक जो कहा वाई मी ऑलवेज, यू नो मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ, और जो 10 थॉट्स हमने आज रियलाइज किए हैं, आज देखे हैं, जरा अपने थॉट्स को देखें और कैटेगराइज करें कि इनमें से कौन कौन से इन कैटेगरीज में आते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि इन्हें परिवर्तित कैसे करना है. क्योंकि ये तो पता चल गया कि ये रॉन्ग है, क्योंकि मेरे दर्द ये मैंने क्रिएट किए, मतलब मेरे दर्द की क्रिएशन भी मैं हूँ. तो अब उसको चेंज कैसे करना है, पॉजिटिविटी और जो पीसफुलनेस या हैप्पीनेस है उसे कैसे क्रिएट करना है, इस पर बात करेंगे आने वाली कड़ी में. आप हमारे साथ रहिएगा, कोशिश करेंगे, ये स्किल सीखेंगे कि कैसे रॉन्ग को राइट करना है. आपसे विदा लेते हैं. हम शांति.

आत्मा भी रामा प्रभु साई रामा।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जीवन को जीने के लिए जो हमें नहीं मालूम थी और शायद इसीलिए हमारा जीवन इतना खाली था। अपने विचारों की ताकत को समझा कि कितने पावरफुल हैं हमारे थॉट्स और कितनी तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। सबसे पावरफुल और डैमेजिंग थॉट्स, जो टॉक्सिक थॉट्स जिनका हम देखते हैं, उनका हमें पता चल जाता है कि किस तरह से, चाहे वो गुस्सा है, नफरत है या ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और दूसरी तरफ देखें तो हमारे साथ पॉजिटिव थॉट्स हैं, राइट थॉट्स हैं, एलिवेटेड थॉट्स हैं। हमारे साथ जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी दोनों हैं, उनसे बात करते हैं इस थॉट पावर के बारे में। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, जो डिफरेंट तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं उनको हमने डिटेल में जानने की कोशिश की है, अभी बात हमने करनी है राइट थॉट्स और एलिवेटेड थॉट्स। व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय राइट थॉट्स?
1: सबसे पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग लोगों को मुश्किल लगता है, परंतु एक आम व्यक्ति भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि परिस्थिति जैसी है वैसी ही हमें देखनी चाहिए। म्यूजियम में जब हम जाते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में नहीं, कोई मोटा दिखता है, दुबला दिखता है, ऊंचा दिखता है तो हम हंसते हैं, अच्छा नहीं लगता है। परंतु सचमुच यही हम अपने जीवन की परिस्थितियों के साथ कर रहे हैं, परिस्थितियों को विकृत रूप दे रहे हैं। ऐसा तो कम से कम नहीं करना चाहिए। परिस्थिति जैसी है वैसी ही देखे। करीब 9 अलग अलग प्रकार के मिरर्स में हम अपने आप को देखते हैं। इसको कहेंगे रॉन्ग थॉट्स। उस रॉन्ग थॉट्स को समझ लेंगे तो फिर राइट थिंकिंग करना भी सहज होगा।
0: ओके, तो मतलब किस तरह से जो है वो हम अपने जो पूरी सिचुएशंस हैं उनको देखें। इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, जब पिछली बार बात हुई थी कि पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं, कैसे क्रिएट किया जाए, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो क्रिएट नहीं कर पाते। यू नो, समझ भी रहे हैं क्योंकि फील गुड के साथ हमने जोड़ा था कि वेदर इट्स अ पॉजिटिव थॉट और अ नेगेटिव थॉट, लेकिन वो हो नहीं पा रहा प्रैक्टिकली। यहाँ बैठ के फॉर्मूला की तरह बात करें तो लगता है कि ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे सिचुएशंस में आते हैं, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट।
2: छोटी सी एक्सरसाइज करके देखें। एक, कुछ समय के लिए अपने आप को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से बचा के रखें। अर्ली इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, टू मच ऑफ न्यूज़ इन द टेलीविजन, बहुत सारे विजुअल्स एंड ऑडियो जो हम नेगेटिव भर रहे हैं, ये हमारी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो कुछ दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करें और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने अंदर भरना शुरू करें। हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के 130 कंट्रीज में 8500 से ऊपर सेंटर्स हैं। इतने सेंटर्स क्यों चाहिए? हर शहर में हम जहां भी रहते हैं विदिन 5 to 6 किलोमीटर्स एक सेंटर है। ये किस लिए चाहिए? ताकि सभी भाई बहने वहां पर आकर आधे घंटे के लिए, चाहे सुबह चाहे शाम, प्रेफरेबली सुबह, परमात्मा का वो ज्ञान लेते हैं, विच इज द हाइएस्ट सोर्स ऑफ प्योर पॉजिटिव एलिवेटेड इन्फॉर्मेशन। तो हमने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया कि सुबह सुबह अखबार रेडियो टेलीविजन की बजाय सुबह सुबह ज्ञान लेना शुरू किया। इतना सा परिवर्तन, पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरल होने लगा। जो भोजन खाएंगे वही एनर्जी क्रिएट होगी। तो एक तो ये ट्राई करें कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन स्टॉप, ट्राई टू क्रिएट कुछ एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ले। दूसरा, सारा दिन कॉन्शियस अटेंशन। और तीसरा, जैसे पहले भी गिरीश भाई ने कहा, लिखो, लिख दे ये नेगेटिव थॉट मेरे अंदर आ रही है, लेट्स से ये काम मेरे से नहीं हो पा रहा। मैं करने की भी कोशिश करता हूँ ना, लोग इसमें ऑब्स्टिकल डालते हैं, यू नो द होल सीरीज, राइट इट डाउन और बैठकर उसका पॉजिटिव लिखे कि इस सिचुएशन में मुझे पॉजिटिव क्या सोचना है। इट्स लाइक अ चाइल्ड लर्निंग टू राइट एंड रीड, नाउ लर्निंग टू थिंक। हमने कभी राइट सोचना ये नहीं सीखा था। एक बच्चे की तरह हमें ABCD से इसको स्टार्ट करना होगा। तो लिखें, उस नेगेटिव को लिखें, और फिर किसी और को अगर समझाते तो क्या पॉजिटिव समझाते उस समय, तो अपने आप को वो पॉजिटिव समझाएं, उसको लिखें। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत जल्दी इट विल बिकम अ नेचुरल प्रोसेस।
1: एक्सरसाइज करने से मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज करेंगे तो आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा।
0: डॉक्टर पटेल, आपने कहा कि कई तरह के राइट थॉट्स हैं, अगर पॉजिटिव हम नहीं भी क्रिएट कर पाए, आपने हमें थोड़ी सी सहूलियत दी थी कि जो भी सिचुएशन है उसको वैसे ही देखें, लेकिन शायद हम भी अवेयर नहीं है कि हम कौन से वो 9 मिरर्स लगाकर हैं, वो हमारे साथ अगर आप शेयर करें।
1: सबसे पहला तो है कि मैग्नीफाइंग मिरर, कि परिस्थिति है, 20% प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम 90% बना देते हैं,
0: हाइपर हो जाते हैं जो,
1: तो मैग्नीफाइंग ना करें, हम ये पहले जज करें, थोड़े डिटैच होकर कि ये समस्या है परंतु कितनी है, 10% समस्या है, तो 10% ही मुझे सोचना है, उसको 15% भी नहीं करना है। ये मैग्नीफाइंग भी हम खत्म कर दे तो बहुत बड़ा फायदा होगा।
0: वेरी ट्रू। यू नो, बच्चा का रिजल्ट वहां से स्कूल से कुछ आ गई, एक कॉल आ गई, और भाई के पेरेंट टीचर मीटिंग में कुछ कह दिया, किसी और चीज
1: का,
0: हस्बैंड के बारे में कुछ पता चल गया, छोटा सा एक
2: सीख, जैसे भाई साहब ने कहा ना, मेकिंग अ बिग इश्यू आउट ऑफ इट। जब कोई और एक बड़ा इश्यू बना रहा होता है ना, हमें दिखाई दे रहा होता है, देखो बात तो इतनी सी है और इसको ये क्या बना रहे हैं, तो डिटैच होकर जब देखते हैं, हमें क्लियर दिखाई देता है परिस्थिति इतनी है, इसको ये देखो कितना बड़ा बना रहे हैं। अब सिर्फ वो चीज अपने में देखनी है, दूसरे को तो कहना इजी है कि बात तो बहुत छोटी है, आप उसको बहुत बड़ा बना रहे हो, ये बहुत कॉमन हमें दिखाई देता है आज। अब सिर्फ जो औरों के अंदर दिखाई देता है, उसको अपने अंदर देखना है कि कैसे हम छोटी बात को कितना बढ़ाते।
0: तो जब भी हमें लगे कुछ बड़ा हो रहा है, बहुत मुश्किल हो गया, वी शुड स्टॉप
1: इवन एवरीथिंग। जो भी हमारे में थोड़ा भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, सोचे कि भी मैं मैग्नीफाइंग तो नहीं कर रहा हूँ, सचमुच परिस्थिति कितनी है, बस उतना ही उसे इम्पोर्टेंस देना है, ज्यादा नहीं देना है। दूसरा है ऑल और नन अप्रोच, कि व्यक्ति जो है परिस्थिति वो एक्सट्रीम में सोचता है, उसके लिए समस्या ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है, परंतु जीवन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इट इज डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। एक आपको उदाहरण दूंगा, एक डॉक्टर का बच्चा 10वीं कक्षा में था, तो उसके फादर ने कहा बेटे मेडिकल में एडमिशन चाहिए, मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो 95% होने चाहिए। उसने मेहनत तो की परंतु अनफॉर्चुनेटली उसके 88% आए। तो पिताजी ने क्या क्या सुनाया उसे कि बस मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अभी तुम कोई काम के नहीं रहे, कम से कम 90 तो आने ही चाहिए थे, मैं किसको मुंह नहीं दिखा सकता हूँ, मेरे बेटे के 88% ही आए, ऐसे एक दो घंटा खूब सुनाया। तो बच्चा एकदम साइलेंस में चला गया। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद उसको शॉक लगा है कि कम परसेंटेज आए, हमने भी उसको डांटा, लेकिन सच मानिए 2 दिन के बाद वो पागल हो गया, आज भी वो पागल है। कई साइकेट्रिस्ट ने उसका इलाज किया, मैंने भी उसका इलाज किया, वो ठीक नहीं होता है। भले एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, परंतु फिर भी
0: उसके लिए वो माँ बाप का एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट होगा।
2: नहीं, लेकिन ये एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन हमें ये मैग्नीट्यूड

0: बेटा हमारे कम से कम 90 का एक्सपेक्टेशन था, तुम्हारे 88% आए, अभी चलो देखते हैं। प्रॉब्लम इज देयर डेफिनेटली, लेकिन आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की, आप अपनी स्टडी टेक्निक को कैसे इम्प्रूव कर सकते थे, हम आपको क्या मदद कर सकते थे, इस सब बातों के बारे में अच्छे से सोचा होता, कोई ठीक से प्लान बनाया होता तो HSC में जरूर उसके 92 या 95 आते। तो दिस इज राइट थिंकिंग ऑफ दैट नो ऑल और नन अप्रोच,
1: इनफैक्ट लुकिंग एट द सिचुएशन इन द रियल सेंस
2: एंड एक्चुअली ट्राई टू मेक द सिचुएशन स्मॉलर। ये भी करो कि कई बार अगर, क्योंकि हमें नहीं पता चलता, हमें लगता है बात तो हमारे लिए बहुत बड़ी, अगर कोई और भी हमें कहे कि इतनी बड़ी बात नहीं है, हम कहेंगे आपको क्या पता, ये बात तो मेरे सामने आई है ना।
1: कई बार ऐसा भी हो रहा था कि अगर मैंने अभी नहीं कहा तो इनको समझ नहीं आएगा, यू नो, लाइक वी शुड हिट इट व्हेन इट्स हॉट, दैट्स व्हाट वी से।
2: एम हैज टू बी कि कितनी भी बड़ी हो हमें उसको बिल्कुल बिल्कुल छोटा करना है, बिल्कुल छोटा करना है। और ये एक गेम है, यू नो, जितना करते जाओगे यू विल रियलाइज कि एक्चुअली बातें तो कुछ भी नहीं होती हैं। हम उनके बारे में सोच सोच के, बोल बोल के, आपस में डिस्कस करके उसको कितना बड़ा बनाते हैं। टेक इट लाइक अ गेम, एक गेम को खेलो कि आपके सामने एक चीज़ आई है जो बहुत बड़ी है, आपको उसको एकदम छोटा करना है। एवरीबडी नोज हाउ टू डू इट, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू डू इट।
1: व्हाई वी डोंट डू इट?
2: सी अगेन, पावर नहीं है ना, हम बहुत डर जाते हैं एकदम से। अभी इस केस में भी डर गए ना, कितने सारे थॉट्स आ गए होंगे, फियर ऑफ फ्यूचर, क्या होगा बच्चे का, क्या होगा, मैं लोगों को क्या कहूंगा, मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बना, उसका तो बच्चा डॉक्टर बन गया। लुक एट द सीरीज ऑफ थॉट्स दैट विल कम। उस समय ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे का कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ सोच लिया, तो जो इम्पोर्टेंट था वो तो सोचा ही नहीं। और इतने सारे थॉट्स जितने बनते, एंड दैट्स व्हाई वी से सिचुएशन उतनी ही बड़ी है जितने आपके थॉट्स उसको बनाते हैं, और कुछ भी नहीं है। जितना आप इससे थॉट क्रिएट करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट द सिचुएशन इज वेरी वेरी बिग। इट विल सीम टू यू कि इससे बुरा तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता।
1: हम वो बना ही देते हैं, फिर फाइनली वो बनी जाती है,
2: क्योंकि हम उसके साथ इतने सारी चीजें अटैच कर रहे हैं ना, लोग क्या कहेंगे, इसका फ्यूचर क्या, इसकी शादी नहीं होगी, आगे करियर, मतलब सो मेनी थिंग्स वी विल अटैच। तो बात तो बड़ी लगेगी उस टाइम। अब हमें डिसाइड करना है उस सिचुएशन में कैसा सोचेंगे, तो सिचुएशन एकदम उतनी छोटी हो जाएगी।
0: ये भी पक्का कर ले, बस राइट थिंकिंग करना है ना, सही मिरर में अपने आप को देखना है, ऑल और नन के मिरर में बिल्कुल नहीं देखना है। तीसरी बात है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि कुछ होता है तो तुरंत हम कुछ निर्णय पर आ जाते, बस ऐसे ही है,
1: और अब भी लेना डिसीजन, अब भी लेना, अब भी करना, यू नो, ये जो एक हमारे पास बिल्कुल वक्त ही नहीं रह गया कि अभी मैंने सिचुएशन में डिसीजन नहीं लिया तो कुछ कुछ गलत हो जाएगा। ये
0: व्यक्ति के बारे में भी हम वी जंप टू कंक्लूजन। एक कंपनी में प्रेसिडेंट थे, उस कंपनी का यूनियन लीडर सवेरे सवेरे उन्हें मिलने आया, सेक्रेटरी को आके कहा कि साहब को मिलना है। वो सोचा रहे सवेरे सवेरे यूनियन लीडर, मतलब बहुत सारी डिमांड लेकर के आया होगा, बस समस्या होगी, अभी मॉर्निंग में नहीं चाहिए। उसको कहा कि कहो कि साहब अभी बिजी है, कुछ देर के बाद आना। फिर से आया, सोचा जरूर इसकी बहुत डिमांड होगी, कहा नहीं नहीं थोड़ी देर के बाद आना, अभी साहब मीटिंग में बिजी है। ऐसे उस दिन वो 5 बार आया, लेकिन कोई ना कोई बहाना बता करके उसे वापस भेज दिया, क्योंकि जंप टू कंक्लूजन दैट यूनियन लीडर मीन्स प्रॉब्लम्स। फिर 7 दिन तक वो दिखाई नहीं दिया, 8वें दिन रास्ते में ही मिल गया। तो उन्होंने सोचा अभी तो पूछूं, अब तक तो उसकी डिमांड शायद बहुत कम हो गई होगी, अब उसको पूछता हूँ और सोल्यूशन लाता हूँ। तो कहा भैया क्या उस दिन तो आए थे, क्या प्रॉब्लम था? उसने कहा नहीं नहीं साहब वो काम तो हो गया। कहते नहीं नहीं बताओ कुछ तो होगा, मैं तुझे मदद कर सकता हूँ। कहा नहीं नहीं साहब कुछ नहीं कर सकते। कहा नहीं कुछ तो कर सकते, बोलो क्या था। कहा नहीं नहीं साहब वो काम तो हो गया। कहते क्या हुआ? कहते साहब मेरे बेटे के मैरिज थे, मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया था, कल ही मैरिज सेरेमनी पूरी हो गई, आज मैं काम पर आ गया, वो तो हो गया। तो देखो जंपिंग टू कंक्लूजन कि भी यूनियन लीडर मींस वो डिमांड लेकर के आया होगा, तो एक बहुत अच्छा सा मौका गवा दिया।
1: तो हाँ, क्योंकि रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा डेवलप
0: होता उससे। तो ऐसा कभी नहीं करना है। कुछ भी हो, नेवर जंप टू कंक्लूजन।
1: ओह यस, सो मेनी टाइम्स वी डू दैट,
0: यू नो, हर परिस्थिति तो एक है। तो बस एनालिसिस करना है, क्या बात है, अच्छे से एनालिसिस करूं और फिर सोचूं कि क्या करूं।
1: और पहले सुन तो ले, पहले हम देख तो नहीं कि है क्या है,
2: जो हम सुन रहे हैं हम उसको भी नहीं ले रहे होते, हम फिर भी कुछ और सोच रहे हैं।

0: पहले तय कर रहे होते हैं
1: कोई अगर हमसे अच्छी तरह से भी बात कर रहा है उसके पीछे भी हम सोच रहे होंगे इसके पीछे क्या, इसको क्या चाहिए मेरे से, ये मेरे से इस तरह से बात कर रहा है वैसे, यू नो सो मच, दिस इज ऑल्सो जंपिंग टू सो मेनी कंक्लूजन्स. और उसकी वजह से वो जो अच्छी सीन भी आपके सामने आई थी उसमें भी आपकी थिंकिंग किस तरफ चली गई, इट वेंट टुवर्ड्स रॉन्ग थिंकिंग. सो सिचुएशंस आर पॉजिटिव, लेकिन हमें आदत पड़ गई है उस पॉजिटिव सिचुएशन में भी कोई ना कोई इस तरह की रॉन्ग थॉट क्रिएट करने की.
2: जब भी थॉट है तभी सोचना है कि इसमें से कोई तो मैं नहीं कर रहा हूँ. चौथा है ऑलवेज मेंटालिटी.
3: एक सेकंड पहले हम थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करते हैं कि पहला था मैग्नीफाई, ऑल और नन, मतलब या तो मुझे सब कुछ मिले या कुछ नहीं, एंड थर्ड इज जंपिंग टू कंक्लूजन. फोर्थ हम आते हैं,
2: फोर्थ इज ऑलवेज मेंटालिटी. अच्छा, भी कुछ हुआ हम समझते सदैव मेरे साथ ही होता है.
3: अच्छा, ऑलवेज मी.
2: हाँ, ऑलवेज मी. कि जब अगर बॉस आपको डांट दे तो सोचते बॉस ऑलवेज मुझे ही डांटता है. या तो मुझे ही सदैव डांट पड़ती है,
3: मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है. हाँ. मेरे साथ जिंदगी में ये होता मेरे अपनों के साथ होता रहता है. हाँ. मेरे बच्चों के साथ ही होता है. हुँ. मेरे साथ जिंदगी में ये चलता है.
2: मेरे साथ सदैव बुरा होता है.
1: विक्टिम फीलिंग भी आ
2: जाती है. बिल्कुल,
1: सो मच ऑफ अ विक्टिम फीलिंग कि ये मेरे साथ ही हो रहा है सारा कुछ.
3: लेकिन अगर ये होता जा रहा हो तो
2: नहीं, तब भी डिटैच हो गया. अगर सचमुच नहीं, कितना भी बुरा होता आप सोचेंगे ना, कुछ बातें अच्छी भी हुई है. भले कुछ बुरी भी हुई है लेकिन 20% 25% अच्छी बातें भी हुई है. उसका भी एक लिस्ट रखना चाहिए कि भी अच्छी बातें हुई है. हो सकता है भी मास में एक बार कुछ हुआ, 6 मास में एक बार हुआ, सदैव नहीं होता है. ये भी इसमें राइट थिंकिंग करना चाहिए कि भले मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, औरों के साथ और प्रॉब्लम भी होते हैं, है ना. क्योंकि मुझे अपना ही दिखाई देता है इसलिए मैं सोचता हूँ कि आई एम ओनली सफरिंग. तो इस प्रकार से जो ऑलवेज मेंटालिटी है उस पर भी विजय प्राप्त करना जरूरी है.
1: एक बार हम एक काउंसलर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा लोग आते हैं इतनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं अपनी, और उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद लगता है मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन उससे पहले हम अपनी इतनी सी भी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाकर बैठे थे. एक बार हम ऐसे एक ग्रुप में बैठे और हर एक से पूछा आपके जीवन में चिंता का कारण क्या है. एवरीवन जस्ट शेयर व्हाट्स द कॉज ऑफ योर स्ट्रेस. तो एक कपल था, उन्होंने कहा हमारे बेटे को चश्मा लग गया है बहुत यंग एज में. छोटा सा था, अबाउट 7-8 years old, कि हमारे बेटे को चश्मा लग गया है. ये सोच सोच के तो हमें बहुत चिंता हो रही है. तो साथ में किसी और ने कहा कोई और प्रॉब्लम नहीं आई है ना सामने अभी. तो इसी बात को लेकर सी, मतलब एक मेंटालिटी बन गई है कि कोई ना कोई बात को लेकर तो मुझे करनी ही है वो थॉट. तो अब जैसे ही अब अगर ये थॉट है कि मेरे बच्चे को चश्मा लग गया, जिस दिन कोई और बड़ी बात आ जाएगी ये बात कोई बात नहीं लगेगी. और यही अगर हम प्रैक्टिस करें कि हर सीन में पॉजिटिव, तो कितनी भी बड़ी बात आ जाएगी हमें वो बात वो नहीं लगेगी. इट हैज बिकम आर यू नो पर्सनैलिटी, आर नेचर टू थिंक ओनली ऑन द वरी एंग्जाइटी नेगेटिव साइड. इसीलिए वो हर टाइम लगता है कि आई एम द विक्टिम. मेरे साथ थोड़ा सा भी कुछ मेरे साथ हुआ तो मेरे साथ ही ऐसा होता है. दिस इज अ वेरी डीप संस्कार जो हमारा बनता जा रहा है कि हर टाइम मेरे साथ ऐसा होता है. एंड हर टाइम जो मेरे साथ बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं
3: वो मैं देखती
1: हूं, दैट इज इग्नोर्ड.
3: क्यों नहीं, क्यों मुझे विक्टिम बनना आसान लगता है क्या? विक्टिम बनते ही जिम्मेदारी किसी और की हो जाती है, ऐसा है,
1: और उदास फील करना जस्टिफाइड हो जाता है.
3: पर हम उदास, अच्छा उदास तो हम फील, सी हम उदास फील तो नहीं करना चाहते ना, लेकिन हम फील कर रहे हैं,
1: उदास फील कर रहे हैं. अब हमें कोई चीज चाहिए जिसके ऊपर हम उसकी ब्लेम डालते हैं.
2: जस्टिफिकेशन
1: है ना कि सिचुएशन ही मेरे साथ हर बार ऐसी हो रही है, हाउ कैन आई बी हैप्पी, दैट इज द थिंग. जैसे कोई रीजन मिल गया ब्लेम करने के लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई. एंड आई टेल माई सेल्फ ये ठीक है, आप जैसा फील कर रहे हो ऐसा ही फील करना है इस परिस्थिति के अंदर. एंड देन वी लिव विद दैट पेन फॉर अ लॉन्ग टाइम.
3: हमने कितनी सारी अपनी जस्टिफिकेशन तो परिस्थितियां तैयार की हुई हैं.
2: और ऐसा सोच के हम औरों की सिंपथी गेन करना भी चाहते हैं. कि जब जस्टिफिकेशन है तो लोग मुझे सिंपथी देंगे. छठी बात है लेबलिंग, हमने आगे भी डिस्कस किया था. लेकिन राइट थिंकिंग में भी हम कई बार गलत रूप से लोगों को लेबल करते हैं. आपके अंडर में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से आप लेबल करते हैं कि ये स्मार्ट है, ये बिल्कुल गलतियां करता रहता है. और जब आप लेबल करते हैं तो इमीडिएटली वो आ जाता है कि इसने किया गलत ही किया होगा. वो भी रॉन्ग है. कभी भी लेबल किसी को नहीं करो.
1: जैसे सपोज कोई टाइम पर नहीं आता तो हम कहते हैं ये तो है ही लेट लतीफ, ये तो हमेशा ही लेट आएगा, इसको कितना भी बोल दो ये नहीं. सो दिस इज नो, दैट पर्सन माइट बी सिंसियरली ट्राइंग टू कम ऑन टाइम, नाउ ही जस्ट नीड्स द राइट एनर्जी.
2: कोई ही मेट कम ऑन टाइम, सपोज वो 50% टाइम पे आने लगे तो भी आप कहेंगे कि तो लेट ही आता है
3: क्योंकि हमने अपने मन में उसको लेबल
1: लगा दिया उसको.
3: अच्छा, तो पर उसे कहना तो चाहिए, कहा तो जा सकता है।
2: हाँ, एक बार लेट आया ठीक है,
3: से रिकॉग्नाइज हमने करा, रिकॉग्नाइज करके हमने रजिस्टर किया, तो रजिस्टर करके हमारे पास तो रहती है वो वीकनेस।
1: जैसे हम लेबल कर देते हैं ना, इट फील्स के ये ऐसा ही है, मतलब देयर इज नो मार्जिन टू चेंज। वो है कि किसी के ऊपर जैसे ना स्टैंप लगा दे कि ये तो है ही ऐसा, एंड फिर वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मेरे तक नहीं, वो लेबल और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर होता है और सभी फिर यही लेबल से वर्क करते हैं। आप उस व्यक्ति को उस लेबल के थ्रू देखना शुरू करते हो, यू नो, नहीं ये तो है ही ऐसा, तो इवन इफ ही इज ट्राइंग टू चेंज, अगर कोई टाइम पे आएगा ना, आज कहेंगे बाय चांस आज टाइम पर आ गया, कल नहीं आएगा ये टाइम पर, इतना बिलीफ सिस्टम वो स्ट्रांग हो जाता है। ये एक दो दिन की बात है, अच्छा चार दिन वो टाइम पर आ रहा है, देखते हैं कब तक चलता है इसका ये चेंज, क्योंकि मेरा लेबल इतना स्ट्रांग है कि वो तो टाइम पर नहीं आ सकता है। सो दैट्स द एनर्जी देन बी ट्रांसमिट टू हिम,
2: वो नेगेटिव एनर्जी हम दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है फिर भी शायद तो नहीं,
1: पर इसको वर्बल भी कर देते हैं हम, मतलब हम बोल देते हैं एक दूसरे को,
3: आज तो यू नो सूरज नहीं निकला, सूरज कहाँ से निकला, आज आप टाइम पे कैसे आए, और ये सब कुछ। यस,
2: सातवीं बात है वाई मी एटीट्यूड। वाई मी एटीट्यूड का बहुत ही अच्छा उदाहरण है आर्थर एसे की, जो विंबलडन में लीगेंड थे, उनको वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, और जब रिटायर हुए उसके कुछ समय के बाद उनको कैंसर हुआ, तो एक उनके फैन ने लिखा कि भी कैसी दुखद बात है कि आप इतने फेमस व्यक्ति थे, आप इतने हाई पोजीशन पर पहुंचे थे, फिर भी भगवान ने आपको कैंसर दे दिया। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि भी 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलने की कोशिश करते हैं, उसमें से करीब 50 लाख ही है या तो 5 लाख ही उसको अच्छे से सीख पाते हैं, उसमें से जो प्रोफेशनल है 50,000 ही बनते हैं, उसमें से 50 ही विंबलडन तक पहुंचते हैं, उसमें से 8 ही है जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं, 4 ही सेमीफाइनल में होते हैं, 2 ही फाइनल में पहुंचते हैं, और अंत में 1 ही चैंपियन ऑफ द चैंपियन डिक्लेयर होता है। जब मेरे हाथ में कप था और मेरा नाम चैंपियन ऑफ द चैंपियन में दिया गया था, तब मैंने भगवान को यह नहीं कहा वाई मी, तो आज मुझे बीमारी हुई है तो भी यह नहीं कहना चाहिए वाई मी। तो बस यही बात, इससे बहुत प्रेरणा मिल सकती है, कोई भी समस्या आए कभी यह नहीं कहो वाई मी, यह सोचो कि भी मेरे को यह प्रॉब्लम है, औरों को और कुछ प्रॉब्लम है,
3: इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस एक्चुअली।
2: हाँ, उल्टा कहते हैं वाई मी नहीं कहो, ट्राई मी लॉर्ड।
3: तो ये हमने 7 तरह की अपने रॉन्ग थॉट्स को, ये दीज आर द रॉन्ग थॉट्स,
2: उसको रॉन्ग थॉट्स राइट में कन्वर्ट करना,
3: आपने कहा 10 होते हैं।
2: हाँ, और भी 8वां जो है जिसको कहा फ्लाई मेंटेलिटी,
3: ओ भागना
2: नहीं, मक्खी की जैसी मेंटेलिटी।
3: अच्छा अच्छा, हाँ,
2: कहते भी मक्खी के सामने मिठाई भी रखो और गंदगी भी रखो तो कहाँ बैठेगी, गंदगी पे ही बैठेगी। तो ऐसे ही लाइफ में भी होता है कि भी जीवन में अच्छी भी बातें हैं, बुरी भी बातें हैं, जिनके पास फ्लाई मेंटेलिटी वो व्यक्ति बुरे पे ही बैठता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। बस ये भी सोचना चाहिए कि भी मेरे में फ्लाई मेंटेलिटी तो नहीं है, बस दोनों चीजें साथ साथ है, मुझे अच्छे पे ही बैठना है। 9वीं बात है जिसको कहते हैं नॉटिंग। नॉटिंग मतलब क्या है कि भी कोई चीज को हम फोर्सिबली भूलने की कोशिश करते हैं। कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि भी उनको पढ़ाई करनी है परंतु दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा है, या तो आप पूजा भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा है, तो आपका ध्यान कंटिन्यूअस वो टीवी के प्रति है, आप फोर्सिबली उसको भूलने की कोशिश करते, भूल नहीं पाते, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, उल्टा टीवी का प्रोग्राम और क्लियरली आपको सुनाई देता है, तो ये नॉटिंग भी नहीं करे। अगर नॉटिंग होता है तो ये सोचो कि टीवी को भूलना नहीं है, मुझे पढ़ना है, मुझे जो कंसंट्रेशन वो पढ़ाई में देना है, अगर पढ़ाई में मैं कंसंट्रेट हो गया ऑटोमेटिकली टीवी से ध्यान चला जाएगा, मेडिटेशन कर रहा हूँ मुझे मेडिटेशन में कंसंट्रेट करना है, ऑटोमेटिक मेरा ध्यान है वह वहां से हट जाएगा,
3: क्योंकि वो तो वहां एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, उसकी एग्जिस्टेंस को तो आप डिनाई नहीं कर सकते।
2: हाँ, लेकिन उसको हमें फोर्सिबली नहीं भूलना है।
3: लेकिन डॉक्टर साहब, इट्स नॉट पॉसिबल। सी, यूजुअली जब आप पढ़ रहे हैं और टीवी चल रहा है, मन वहां है, तो आपका मन वहीं जाता ही है,
1: इसलिए क्योंकि वो चीज आपको ज्यादा इंटरेस्ट करती है। माइंड कहाँ जाएगा, जो दोनों में से आपको चीजें ज्यादा इंटरेस्ट करेंगे। यही अगर आप टीवी देख रहे हैं सपोज आप टीवी देख रहे हैं और एक्चुअली कोई आपको बुला रहा है कि पढ़ लो, शोर भी मचा रहा है, आ जाओ पढ़ लो, आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे क्योंकि आपका पूरा इंटरेस्ट किस में है, टीवी देखने में. प्रोवाइडेड यू आर डूइंग समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग यू, आपको दूसरी चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी. तो इसी में हमें अपने आप की फिर थॉट्स को चेंज करनी है कि वहां एक चीज चल रही है, यहाँ एक चीज चल रही है, मेरे लिए इस समय कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है. फिर अपने आप इट्स सेड के वेर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो देयर. नाउ इट्स इंपॉर्टेंट कि आपकी अटेंशन कहाँ जाए, हमारी अटेंशन एक्चुअली वहां जाती है तो फिर एनर्जी भी उसी तरफ जाएगी. लेट मी फोकस कि ये मुझे ये करना है, नहीं हो रहा है माइट एज वेल गो एंड सिट देयर. लेकिन ये जो संघर्ष चलता रहेगा इट वॉन्ट हैपन. एंड वो सिर्फ इस चीजों में नहीं, सारा दिन में बहुत सारी चीजों में चल रहा है, ऑफिस में भी काम मुझे अपने पर करना है, इवन वट एवर वर्क आई एम डूइंग, लेकिन मेरा ज्यादा ध्यान दूसरी चीजों में जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, देन आई एम ट्राइंग टू फोर्सफुली टेक माई सेल्फ बैक फ्रॉम देयर. इन द अदर वे अराउंड, मुझे क्या करना है एंड आई फोकस माई एनर्जी टोटली ऑन दैट, अपने आप अटेंशन वहां से हटेगा. मतलब वो कुछ और चीज भूलने की बजाय इसको याद करना है. जैसे परमात्मा भी हमें सिखाते कि मुझे गुस्सा नहीं करना, ये नहीं सोचना है, आई एम अ पीसफुल सोल, इस पर अटेंशन रखना है, एनर्जी विल ऑटोमेटिकली गेट क्रिएटेड. नहीं तो वो माइंड और भी उसके कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता
3: है, जा रहा है तो फिर अटेंशन उधर ही
1: उसी तरफ चला जाता है.
2: और दसवां है डिस्क्वालीफाइंग द गुड. कई बार अच्छी चीजें होती है हमारे जीवन लेकिन उसको भी हम डिस्क्वालीफाई करते हैं. एक महिला ने एक दिन बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी तो लोगों ने बहुत उसको प्रेज किया कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, बहुत अच्छी साड़ी. सबको कहते क्या बेकार की साड़ी है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं पहनती हूँ, आज कोई मौका कुछ नहीं मिला तो इसी को पहनना पड़ा क्योंकि मेरी सास ने प्रेजेंट की थी. तो दिस इज डिस्क्वालीफाइंग द गुड. नो सो मच गुड वॉज देयर, नो शी कुड हैव इम्प्रूव हर सेल्फ एस्टीम, औरों को भी अच्छा लगता, शी वुड हैव फेल्ट गुड ऑल्सो अबाउट इट. लेकिन उसको भी भाई सास ने प्रेजेंट की थी कह के सब कुछ वॉश आउट कर दिया
3: क्योंकि वो एक थॉट के दी आया कहां से, वहां पे रिश्ता ठीक नहीं था,
2: वो जरूरी नहीं था, कोई वो पूछ नहीं रहा था, लेबल भी नहीं लगा था कि किसने प्रेजेंट किया आपको. तो इसलिए जब भी अच्छा होता है रियली उसका हम आनंद ले, अपने स्वमान को बढ़ाए, इवन एंथुसियाज्म को इम्प्रूव करे, अच्छी चीज को भी डिस्क्वालीफाई ना कर दे.
3: जो अच्छा है उसे अच्छा ही अच्छे रूप में ही देखें. सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, वक्त का पता नहीं चलता जब हम अपने विचारों के इस ताने बाने में उलझ जाते हैं, लेकिन आज जो बातें समझ में आई कि जो 10 तरह के ऐसे थॉट्स जिन्हें एक्चुअली अगर नेचुरली देखा जाए तो राइट होना चाहिए, बट हम किस मिरर से देखते हैं, आपने कहा कि कौन सा ग्लास लगाकर हम देख रहे हैं और सारी चीजें उल्टी होती जा रही. सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, थैंक यू सो मच. ओम शांति. आज हमने उन 10 सिचुएशंस को देखा, वो ऐसे थॉट्स जो शायद मैं अवेयर भी नहीं हूँ, मतलब ये चीजें अपने आप होती जाती रही हैं अभी तक जीवन में, लेकिन थोड़ा सा अगर बैठकर देखेंगे तो सचमुच, चाहे वो किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को मैग्निफाई करने की बात हो, चाहे एक जो कहा वाई मी ऑलवेज, यू नो मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ, और जो 10 थॉट्स हमने आज रियलाइज किए हैं, आज देखे हैं, जरा अपने थॉट्स को देखें और कैटेगराइज करें कि इनमें से कौन कौन से इन कैटेगरीज में आते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि इन्हें परिवर्तित कैसे करना है. क्योंकि ये तो पता चल गया कि ये रॉन्ग है, क्योंकि मेरे दर्द ये मैंने क्रिएट किए, मतलब मेरे दर्द की क्रिएशन भी मैं हूँ. तो अब उसको चेंज कैसे करना है, पॉजिटिविटी और जो पीसफुलनेस या हैप्पीनेस है उसे कैसे क्रिएट करना है, इस पर बात करेंगे आने वाली कड़ी में. आप हमारे साथ रहिएगा, कोशिश करेंगे, ये स्किल सीखेंगे कि कैसे रॉन्ग को राइट करना है. आपसे विदा लेते हैं. हम शांति.